0: करने में वस्त शेषमा है दिया।
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Radyo Wave. Radyo Wave.